0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
2: टाइम चेक अहिले ठीक 9 बजेको छ
3: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
4: यो कृष्णसार एफएम
0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज

0: रंगा उदय देश मेरो एवरेस्ट
1: यो कृष्ण सार एफएम
2: 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जत्तिकै तेज।

0: जस्तक सर्जरी के सक्कु उपचार, प्रसूति व स्त्री रोग के सक्कु उपचार, नसा व हड्डी रोग के सक्कु उपचार, मस्तिष्क व मानसिक रोग के सक्कु उपचार, छाला रोग के उपचार, नाक कान घाँटी रोग के सक्कु उपचार सेवा देती आइल बा।
1: ओस्तक, सुगर, ब्लड प्रेसर, मुटु रोग, पेट, छाती, कलेजो सम्बन्धी सक्कु उपचार, प्याथोलोजी ल्याब सेवा, भिडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे ओ और सबको सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पतालक संगे हरेक महिनाक अंतिम शुक्रवार काठमाडौँ मेडिसिटी अस्पताल के सुगर ओ थायराइड रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुमन ब्राल ऐना जानकारी फेन कराइदी।
0: नोट, ई अस्पतालम कार्यरत सक्कु डाक्टरन से हरेक महिनाक अंतिम शनिवार निशुल्क ओपीडी सेवा देना संगे जाँचमा 20% विशेष छुट के व्यवस्था करल बा। नेपालगंज नेशनल अस्पताल बीपी चोक नेपालगंज, संपर्क नंबर 081536465, 98249806665 ओ 98482804465।

0: लिनु भए त
1: एनसेल प्याक किन्नु भए त जहिले पनि जहाँ पनि प्याक खरीद गर्नुहोस् अनि 20% सम्म क्याश फिर्ता एनसेल एपमा क्लेम गर्नुहोस् एनसेल प्याक किन्नु भए त शर्तहरू लागू हुनेछन् एनसेल नेपालकै लागि
2: रंग बहार
3: बर्जर संगै उपहारै उपहार बम्परमा यामाहा रेजियर
2: बर्जर पेन्सले घर रंगाउनुहोस् र लकी ड्र मार्फत यामाहा रेजियर 125 स्कुटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनुहोस्
3: साथै 65 इन्चको स्मार्ट टिभी रेफ्रिजरेटर वाशिङ मसिन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहारहरू पनि घर रंगाउ खुशी बढाउ उपहार जित्ने अवसर पाउ
2: बर्जर पेन्स
4: नाक कान र घाँटीका रोगीहरूको लागि विशेष सूचना
5: भेरी अञ्चल अस्पतालमा लामो समय काम गरी सेवानिवृत्त प्रमुख कन्सल्टेन्ट ईएनटी विशेषज्ञ डाक्टर रमेश कुमार श्रेष्ठ र हाल भेरी अञ्चल अस्पतालमा नाक कान घाँटी विभागमा कार्यरत ईएनटी कन्सल्टेन्ट डाक्टर सगुन श्रेष्ठसँग उपचारको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्जमा हप्ताको 7 दिन सेवा उपलब्ध छ हाम्रा थप सेवाहरू एक्सरे इन्डोस्कोपी प्रयोगशाला अडियोग्राम तथा आवश्यक परेको खण्डमा बिरामीलाई अपरेसनको पनि व्यवस्था छ विस्तृत जानकारीको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्ज सम्पर्क फोन नम्बर 081531380 मोबाइल 98580304 र 98481380
6: ओहो आज डाइह नै मजा लागत हो मजा से दवाई करे ना कहटो
7: ए तो ओकर लाग कान्ति आरोग्य अस्पताल जाई न पश्चिम नेपाल के अनुभवी व उत्कृष्ट विशेषज्ञ चिरफार कैना डाक्टर से विश्वासिलो स्वास्थ्य सेवा यह कान्ति आरोग्य अस्पताल नेपालगंज में मिलत
6: ए बात ठीक कैलो साच्ची की अस्पताल में का का सुविधा मिलत
7: वहाँ त 24 घंटा इमरजेंसी सेवा दैनिक ओपीडी सेवा दूरबीन और लेजर प्रविधि से शल्यक्रिया जरल घाव उपचार करना संगे एनआईसीयू पीआईसीयू आईसीयू हाईटेक ऑपरेशन थिएटर हो सुरक्षित प्रसूति सेवा फे वहाँ पा जाइत छोट बच्चा हो भर्खर जन्मल बच्चन के सामान्य से लैके जटिल रोग संगे सकु प्रकार के रोग के उपचार फे वहाँ कई जाइत
6: ए ओसिनो कला से वहाँ जाई मन फे ढुक्क हुइना चाहल रह
7: हो तो स्वास्थ्य हेरचाह कहले ठीक ठाउँ रोजना हो कान्ति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज सक्कुमेरिक उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा अक्क ठाउँमा सम्पर्क नम्बर 081535717 कान्ति आरोग्य अस्पताल अपने हुकरन के स्वास्थ्य हमार स्नेहा
6: कान के समस्या बा उपचार कराइकला कहाँ लैजिना हो
7: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केन्द्र मा जाइन वहाँ त अनुभवी चिकित्सक को वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राविधिक से हरेक दिन कान के परीक्षण हुइत ओतरकेल कहाँ हो वहाँ तो लम्बा समय से कान पक्ति रहना जीर्ण रोग काने ढुसी कान खजुइना कान कम सुन्ना कान दम्मा हुइना विटामिन के उपचार और परामर्श वो लम्बा समय से कान पक्ती रहले कान के जालिम पाल परल कान हड्डी खैना रोग के ऑपरेशन कैके उपचार हुईट वाकर संगे कान कम सुन्ना विटामिन के लाग कान में लगाइना सस्ता व महंगा ढेर प्रकार के कान के मेसिन विटामिन के रोजाई अनुसार के उपलब्ध फे करा जाइत जस्तेक बीटीई सीआईसी आरआईसी जैसिन मेसिन फे वहाँ मिलत
6: ए ओसिड हो कला से बुढ़ू हो वहाँ ले जाके उपचार करेले से वजह से सुन से कही ट
7: एकदम समय में उपचार करेले से उपचार संभव बा बागेश्वरी स्वास्थ्य सेहार केन्द्र प्राली नेपालगंज फुलटेकरा आर्मी ब्यारेक के सामने राप्ती रोड बांके संचालक पूरन चौधरी संपर्क नंबर 98 84 20 697 98 85 23 697 वो 98 014 83 697 बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में सहभागी हुई नियमित कान के जांच करी
6: खुशी के खबर खुशी के खबर हमार शहर नेपालगंज में ढेर बरस से सेवा देती आयल नेपालगंज नेशनल अस्पताल में ढेर विशेषज्ञ डॉक्टरन से रोज दिन स्वास्थ्य सेवा देती आयल बा। ई अस्पताल में रोज दिन ढेर विशेषज्ञ डॉक्टरन से ओपीडी सेवा देना के संगे ढेर सेवा देती रलेक जानकारी कराईटी।
7: जस्तक सर्जरी के सक्कू उपचार, प्रसूति व स्त्री रोग के सक्कू उपचार, नसा व हड्डी रोग के सक्कू उपचार, मस्तिष्क व मानसिक रोग के सक्कू उपचार, छाला रोग के उपचार, नाक कान घाटी रोग के सक्कू उपचार सेवा देती आयल बा।
6: ओस्तक सुगर, ब्लड प्रेसर, मुटु रोग, पेट, छाती, कलेजो संबंधी सक्कू उपचार, पैथोलॉजी लैब सेवा, वीडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे और सक्कू सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पतालक संगे हरेक महीनक अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल के सुगर और थायराइड रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुमन बराल ऐना जानकारी फेन कराईटी।
7: नोट, ई अस्पताल कार्यरत सक्कू डाक्टरन से हरेक महीनक अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा देना संगे जांच में 20% विशेष छूट के व्यवस्था करल बा। नेपालगंज नेशनल अस्पताल बीपी चौक नेपालगंज, संपर्क नंबर 081536465, 98239806665 व 98482804665।

0: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस तेज।
1: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई?
2: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र जाओ न, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में यहाँ ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करत हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बिरामी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसे मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
1: अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो?
2: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र प्राली नेपालगंज फुलटेकरा आर्मी बैरक के सामने राप्ती रोड बांके। संचालक पूरन चौधरी। संपर्क नंबर 98480-2697, 98580-2697 और 98014-83697।
3: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।
1: खुशी के खबर, हम लोगन के अपने शहर नेपालगंज में यहाँ सालों से सेवा देते आवा रहा नेपालगंज नेशनल अस्पताल में यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर लोगन से दैनिक रूप में यहाँ तमामन स्वास्थ्य सेवा प्रदान होते आवा है।
2: ये अस्पताल में यहाँ दैनिक रूप से तमाम मेर के विशेषज्ञ लोगन से ओपीडी सेवा हो, एक साथ हैं तमाम मेर के सेवा होत रहा जानकारी करावा चाह जात है। जैसे सर्जरी संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: प्रसूति और महिला लोगन संबंधी संपूर्ण इलाज,
2: नस और हड्डी रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: मस्तिष्क और मानसिक रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
2: चर्म रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: नाक कान और गटई संबंधी संपूर्ण इलाज,
2: शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, पेट, छाती, कलेजा संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: पैथोलॉजी लैब संबंधी संपूर्ण चेक जांच किया जाते है।
2: वीडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे और संपूर्ण सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पताल के साथ हैं हर एक महीना के अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल से शुगर और थायराइड रोग के इलाज के खातिर डॉक्टर सुमन बराल आवश्यक जानकारी भी करावा जाता है।
1: नोट, ई अस्पताल में यहाँ कार्यरत संपूर्ण डॉक्टर लोगन से प्रत्येक महीना के अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा ले साथ ही जांच में यहाँ 20% छूट के व्यवस्था किया गया है।
2: संपर्क नंबर 081-536-465, 98-239-80-665 और 98-482-80-465।
4: वाओ, प्लस टू परीक्षा पनि पास भयो, अब कुन कलेज में भर्ना हुने होला?
5: लहै बधाई छ, अनि तिम्रो उज्जवल भविष्यका लागि उत्कृष्ट विकल्प नेपालगंज बहुमुखी क्याम्पस एनएमसी छ नि।
4: ए हो र, त्यहाँ के पढ्न पाइन्छ त, अनि त्यहाँको विशेषता पनि भन्देऊ न।
5: त्यहाँ ब्याचलर अफ बिजनेस स्टडीज बीबीएस तथा एसीसीए कार्यक्रमका लागि भर्ना खुला भइसकेको छ। दक्ष तथा अनुभवी शिक्षकद्वारा गुणस्तरीय शिक्षण, वातानुकूलित एसी कक्षा कोठा, समृद्ध पुस्तकालय, अतिरिक्त क्रियाकलाप, नियमित फिल्ड भिजिट तथा औद्योगिक भ्रमण, आधुनिक शिक्षण वातावरण र विद्यार्थी मैत्री व्यवस्थापन सहित आफ्नो उज्जवल भविष्यको यात्रा सुरु गर्न सकिन्छ।
4: ल, तिमीलाई धेरै धेरै धन्यवाद, त्यसो भए म पनि यही भर्ना हुन्छु।
2: हजुर, प्लस टू परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण गर्नुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना। उच्च शिक्षाको उत्कृष्ट गन्तव्य नेपालगञ्ज बहुमुखी क्याम्पस एनएमसीमा ब्याचलर अफ बिजनेस स्टडिज बीबीएस तथा एसीसीए कार्यक्रमका लागि भर्ना खुल्ला भइसकेको छ।
4: नेपालगञ्ज बहुमुखी क्याम्पस एनएमसी आदर्श ग्रुपद्वारा सञ्चालित, ठेगाना नेपालगञ्ज 10 बाँके औद्योगिक क्षेत्रको ठिक अगाडि। थप जानकारीका लागि सम्पर्क 98-580-36-577, 98-580-28-195 र 98-580-36-811। नेपालगञ्ज बहुमुखी क्याम्पस एनएमसी, सफल भविष्यको बलियो आधार।

0: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस तेज
1: काकी पाए लागी
2: खुश रहो भैया खुश रहो
1: आ रेडियो लिए घूमत हो
2: अरे इमा कोई प्रोग्राम हुआ सुने मारे रेडियो वाले बैठे हैं ना और का भैया
3: हे सैया मिले लर कैया में का करूं
1: तो काकी तू नहीं जाना था हम किरौमिया कार्यक्रम चना जोर गरम लेके आई थे किसी सारे एफएम से दिन के 1 बजे।
2: अरे वाह भैया ये तो बहुत बढ़िया बात होगा। अब तो हम जाए थे सब गंगा मैया सबका बतेबे और सब जगह बतेबे कि चना जोर गरम आवत है कृषि सार एफएम 94 मेगाहर्ट्ज से दोपहर के 1 बजे से। और हाँ भैया सुनो ना यहू बतेबे किराऊ मिया जी के साथ जरूर सुना जाए कार्यक्रम चना जोर गरम रेडियो के सारे एफएम 94 मेगाहर्ट्ज से दैनिक प्रोग्राम दोपहर 2 बजे से।

0: हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे है हमका प्यार कार्यक्रम चना जोर गरम सुने वाले सब यार दोस्त का प्यार भरा सलाम और नमस्कार। हाँ तो श्रोताई प्यारा से कार्यक्रम लेकर आप लोगों के दुकान दुकान मकान खेत खरियान डाल पहाड़ देश विदेश यानी हर जगह पर हम पर श्रोता संचालक मियाँ जी आए गए प्रावधिक माँ जो सदा साथी रहा आज भी इमरे चंदा जी। तो साथी कार्यक्रम जो आप लोगों के लोकप्रिय रेडियो किसी सारे FM 94 मेगा हर से प्रसारित होते है 1 बजे से 3 बजे तक रहा थे। साथी जो आप टोकबर माँ सुना गा हो का ना जाना जी कि दिन के 2 बजे कभी कभी ऐसे हो ही जाते पहले के बज गया है। तो ऐसे आप लोग से ही कहते हैं नंबर में जुड़ा जाए सुने कैसी 415 के लाइन में आवाज़ नेपाल के साथी नेपाल से बाहर के साथी 00970481 के लाइन में आवाज़। तो साथी आज के पहला नंबर में क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लोग एकदम ध्यान से सुना जाए। जैसे पहला नंबर में है कि जो आप लोग ध्यान से सुना जाए। हाँ सांपों से भरी एक पटारी सबके मुँह में दे चिंगारी, जोड़े हाथ तो निकले घर से फिर भी घर पर सिर दे पटके, एक नंबर माँ है। दो नंबर माँ है काला हंडा उज्जल भात ले लो भैया हाथे हाथ, काला हंडा उज्जल भात ले लो भैया हाथे हाथ, दोनों का सही उत्तर दिया जी। उत्तर दे वाले साथी का पुरस्कार टी शर्ट दिया जी, कहाँ से दिया जी आप लोगों के माना जाना हुआ ज्योति टेलर जो सदर लाइन वार्ड नंबर 4 में है, जहाँ से हर मेर के लेडीज जेंट्स अड्डा ऑफिस कोट पैंट कुर्ता सलवार सफारी सूट सब मेर के कपड़ा आसियत है, वहाँ से आपका टी शर्ट दिया जी। तो साथी कार्यक्रम आप लोगों के 1 बजे से 3 बजे तक रही लगी पे लगाओ तकदीर का आजमाओ जीता जाए परहेज और किसी सारे फिल्म से ले जाओ। तो साथी आप लोग एकदम नंबर में जुड़ा जाए। अब हम चले थे पहले सुना जाए छोटा सा व्यापारी विज्ञापन के बाद में सुना जाए प्यारा से कव्वाली।
1: दाई धेरै समय देखि महिनावारी गडबडी सेतो पानी बग्ने र पेट दुख्ने समस्याले साह्रै दुख पाएकी छु, कहाँ जाँदा राम्रो होला?
2: म पनि पहिला ग्यास्ट्रिक पाइल्स र पेटको समस्याले धेरै हैरान थिएँ, पछि नेपालगञ्जको मेडिकेयर क्लिनिक गएँ, त्यहाँ महिला र पुरुष दुवैका समस्याको उपचार र अपरेसन एउटै ठाउँमा हुने रहेछ। अनुभवी विशेषज्ञ डाक्टरबाट सेवा पाएपछि अहिले मलाई धेरै आराम भएको छ।
1: हो र, त्यहाँ के सेवा पाइन्छ त दाई?
2: सुन, त्यहाँ महिलाहरूका लागि बाँझोपन, सेतो पानी, महिनावारी गडबडी, गर्भवती जाँच, पाठेघर तथा स्तन सम्बन्धी समस्याको उपचार पाइन्छ, र पुरुष तथा अन्य बिरामीहरूका लागि ग्यास्ट्रिक पाइल्स, हर्निया, एपेन्डिक्स, थाइराइड, पित्त थैली, गाँठा गुठी तथा विभिन्न ल्याप्रोस्कोपिक र लेजर सर्जरी सेवा पनि उपलब्ध छ नि।
1: हजुर, मेडिकेयर क्लिनिकमा वरिष्ठ ल्याप्रोस्कोपिक दूरबीन तथा लेजर सर्जन डाक्टर कमर हसन अन्सारी र वरिष्ठ ल्याप्रोस्कोपिक स्त्री तथा क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डाक्टर अमिरुन निशाले सेवा दिइरहनु भएको छ। तपाईँ पनि आजै कुनै पनि चेक जाँच र अपरेसनका लागि नाम दर्ता गरेर ढुक्क बन्नुहोस्।
2: मेडिकेयर क्लिनिक नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 बिपी चोक नजिक उपमहानगरपालिकाको कार्यालय लाइनमा, सम्पर्क नम्बर 97639711786 र 98224392377।
3: मेडिकेयर क्लिनिक महिला र पुरुष दुवैको स्वास्थ्य उपचारको भरपर्दो गन्तव्य।
4: हाम्रो बिहे भएको पनि 8 वर्ष भइसक्यो, सबैले एउटै प्रश्न सोध्छन्, खुसीको खबर कहिले सुनाउने भनेर।
5: मलाई थाहा छ तिमी कति पीडामा छौ, तर हामीले अहिले आशा मार्नु हुँदैन।
4: कति अस्पताल धायौ, कति उपचार गरायौ, अब त सपना पनि अधुरै रहने हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ।
5: होइन, हामीसँग अझै आशा छ। मैले शुभश्री IVF क्लिनिकको बारेमा धेरै सुनेको छु, जहाँ धेरै दम्पतिहरूको काख भरिएको छ।
6: सन्तान सुखको यात्रामा तपाईँको भरोसाको साथी शुभश्री IVF क्लिनिक, अनुभवी विशेषज्ञ चिकित्सक, आधुनिक प्रविधि र व्यक्तिगत हेरचाह सहित।
4: हाम्रो जीवनमा पनि आखिर त्यो दिन आयो।
5: धन्यवाद शुभश्री आइबीएफ, हाम्रो सपना साकार बनाइदिनु भएकोमा।
6: थप जानकारीका लागि शुभश्री आइबीएफ क्लिनिक सोल्टीमोड काठमाडौँ, फोन नम्बर 98 61 14 16 99।
7: नमस्ते दाई।
8: नमस्ते नमस्ते, धेरै दिनपछि देख्यौ त भाइ।
7: विदेश जान आँटेको दाई, प्रोसेस गर्दै थिए। अहिले भर्खरै एभरेस्ट इन्टरनेसनल पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टरबाट स्वास्थ्य जाँच गराएर आएको।
8: समयमै सही ठाउँमा गएछौ त। अब जहाँ पाए त्यही स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा त ठगिने सम्भावना पनि त हुन्छ नि।
9: तपाईँ पनि वैदेशिक रोजगारीका लागि जाँदै हुनुहुन्छ भने नक्कली स्वास्थ्य परीक्षणदेखि सावधान।
10: सुदूरपश्चिम कर्णाली तथा लुम्बिनी प्रदेशको श्रम मन्त्रालयबाट मान्यता प्राप्त एकमात्र पुरानो नेपालगञ्जमा रहेको एभरेस्ट इन्टरनेसनल पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टरमा आउनुहोस्। ग्यारेन्टीको साथ स्वास्थ्य जाँच गराउनुहोस्। अनलाइन स्वास्थ्य परीक्षण गराउनु नै सबैभन्दा उत्तम उपाय हो।
1: हाम्रा विशेषताहरू:
10: वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको ग्यारेन्टीका साथ अनलाइन मेडिकल गरिन्छ।
1: प्रत्येक दिन पेट, छाती, मुटु तथा सुगर, थाइराइड रोग विशेषज्ञबाट ओपीडी सेवा।
10: महिला तथा प्रसूति रोग सम्बन्धी उपचार सेवाको साथै निसन्तान, बाझोपन सम्बन्धी नियमित उपचार तथा परामर्श सेवा।
1: प्रत्येक महिना

0: हाँ तो श्रोताई प्यारा सी कवाली सुना गा खैर आप लोगन का अच्छा लागो तो आप लोग एकदम नंबर में जुड़ा जाए सुने कैसी 415-122 के लाइन में आ जाए कैसे कार्यक्रम जो आप लोगन के घर अंगना दुकान मकान खेत करियान डाड़ पहाड़ देश विदेश यानी हर जगह पर आप के प्रिय रेडियो किसी सारे FM 94 MHz से कार्यक्रम चला था। तो साथ ही इसे आप लोग कार्यक्रम में जुड़ा जाए सुने कैसी 415-122 के लाइन आप लोगों के लिए कोई साथी फोन लाइन वहाँ देखी को कहाँ से नमस्कार साथी आए चले गए आवे जाए तो इसे हो जाते काते बरखक रीत बदर के छाही लाग गा तो हाँ नहीं तो ना ही। तो साथी नंबर में जुड़ा जाए सुने कैसी 415-122 के लाइन में हाँ कोई साथी है देखी को कहाँ से नमस्कार साथी आप अगर मिस कॉल किया जाते तो कार्यक्रम में मिस कॉल मत ना करा जाए कैसे जब मिस कॉल करके फ़ोन काट दिया जाते तो बहुत लोग आपका अच्छा भी कहते हैं बहुत लोग आपका बुरा भी कहते हैं कैसे कहते हैं नहाना है तो भी धारे में आओ किनारे में क्या रखा है फ़ोन करना है तो दिल से करो ये मिस कॉल मारे में क्या रखा है तो वही वाली हाल है मिस कॉल मत मारा जाए गलत काम है। तो इसे आप नंबर में जुड़ा जाए सुने कैसी 415 में कोई साथी है देखी को कहाँ से हाँ नमस्कार
1: नमस्कार मियाँ जी
0: नमस्कार नमस्कार
1: और सुनाओ
0: हाँ सब बढ़िया आपके नाम
1: अरे नेपाल राजिया
0: आप मिस कॉल करता हो
1: अरे हम ना लगाओ रहा पहले लगाओ रहा है तो बैलेंस खत्म हो जा रहा है तो दोस्त लगाओ है
0: अच्छा
1: हम कहा कर
0: ये बीचे में यहाँ दी रहो तुम तो मिस कॉल मारे हो
1: ना गलत बात नंबर देखो हम लगे नहीं करे हम पहला नंबर कट गया रहे उसके बाद दूसरी नंबर हमारा है
0: तो काम कुमार गड्ढी में लाइए कसम खवाई बे
1: अरे जहाँ कहा तहाँ पकड़ लटक गई
0: कुमार गड्ढी जान थो कि नहीं जान थो
1: हाँ
0: कहाँ है
1: बंद लीजिए सारे
0: इंदर गांव के पच्चू
1: हाँ
0: तो
1: और सुनाओ
0: हाँ सब बढ़िया क्वेश्चन के उत्तर दो
1: कहा रहा कब कह रहा है
0: पहला नंबर में है ना
1: हाँ?
0: पहला नंबर में आ रहा है सांपों से भरी पटारी
1: अच्छा
0: हाँ सांपों से भरी पटारी सबके अच्छा? मुंह में दे चिंगारी
1: अच्छा
0: जोड़े हाथ तो निकले घर से
1: अच्छा
0: फिर भी घर घर पर सिर पटके
1: अच्छा
0: हाँ
1: और
0: एक काला हंडा उज्जवल भार ले लो भैया हाथ है हाथ तुरे बियड़वे वाली हाल
1: हाँ अच्छा जैसे
0: हाँ दोनों बताओ
1: तो एक नंबर के साइड लागत है कि सलाई हो
0: हाँ
1: और दो नंबर के साइड कहाँ से मुस्लिम भाग बनाते हो सबका जितने परिवार हो सबका बांटे करते हैं हाथ हाथ में दे तो भूखे न रहते
0: कहाँ नहीं तो काला हंडा उज्जवल भात
1: हाँ
0: ले लो भैया हाथ है हाथ
1: हाँ
0: वो माँ भैया उठाए लो माँ मांगे देख ना ये ले लो हाथ है हाथ और काला काला हंडा है उज्जवल भात है और ले लो भैया हाथ है हाथ थोड़ा
1: तो सांजीरा के फसला काला ही तो रहा तो चोर उज्जवल हाथ बनाते तो उजलाए आप अब
0: कहा थे चिट्ठिया पतिया सब कोई बांटे करमुआ कोई ना बांटे हमार
1: हाँ सजन बाकी बात मिल बांट लिया जी मिया जी और हम और सब परिवार भर कितना सही तुम
0: ठीक है नेपाल वाले राजा
1: हजूर
0: ठीक है आप जो ना आप बतावागा वो तो सही गलत अब लास्ट में हम आप ही बताएंगे है नहीं
1: ठीक हाँ हाँ तो आप तो है ये हो तो बढ़िया बढ़िया कव्वाली एक बार ऐसा सुनाओ जाए कि पूरा सब कार्यक्रम जितना है अपने सब टोल मोल जात नात भाई बंद भाइनों सब दुनियादारी सबके दिल खुश हो जाए
0: तो कौन कव्वाली सुनी हो
1: और सबसे ज्यादा हमारी मिया जी की तबीयत खुश हो जाए
0: कौन कव्वाली सुनी हो
1: तो कव्वाली ऐसा सुनाया जाए कि बढ़िया बेहतरीन ढूंढ के निकालो अपने मर्जी से
0: अरे तो मुँह खोलो मुँह खोलो कुछ बोलो
1: अरे उसका हम ख्याल कर रहे हैं लेकिन बहन बुलाए लेकिन बहुत मस्त कव्वाली रहा है अच्छा। उस लता मंगेशकर के स्वर के आवाज में रहा है
0: तो
1: और
0: कुछ
1: बम्बई बम्बई के हीना हीना पार्टी कव्वाल से लिखा रहा है हीना कव्वाल कहते हुई
0: हीना कव्वाल
1: हाँ जवाबी
0: अच्छा ठीक है जो हीना कव्वाल के मिल गई तो हम बजाए देवे ना
1: अच्छा
0: ठीक है नमस्कार
1: नमस्कार
0: हाँ साथी बिलासपुर से रहा है जो हमरे नेपाल वाले राजा उर्फ सागर बहेलिया जो ये पेड़ पौधा वाले यानी सब कह के फल फूल के साग सब्जी के बीज उज ये सब बिरवा पौधा बेचत हैं। कोई साथी है? नमस्कार। साथी आप के फोन फिर कट गया, आप के री लीला हो। हम नंबर आएगा है, नंबर अगर हम लिख लिया तो जान लो कि आपका। हाँ कोई साथी देखी को कहाँ के। नमस्कार।
2: हेलो।
0: नमस्कार।
2: सलाम अलैकुम मियाँ जी।
0: वालेकुम सलाम। मिसकाल कहे मार था बहुत।
2: अरे हम मिसकाल मारे वाला काम ना करी थे, काम डायरेक्ट फोन करी थे।
0: अच्छा आपके नाम?
2: राजू मौर्या जी बोल रहे हैं, भवानी बाग वाला नंबर का रहते।
0: राजू मौर्या
2: जी। मियाँ जी
0: और बढ़िया है राजीव?
2: हाँ मियाँ जी सब बढ़िया है, चकाचक है, मौसम भी बहुत बढ़िया है आज।
0: बस बढ़िया हो चाहिए।
2: दो मोबाइल में कार्यक्रम लगाए हैं, सुन रहे हैं, एक बटन वाला है एक टच वाला है, टच वाले से भी कॉल करी थे।
0: हाँ ठीक है, क्वेश्चन के उत्तर दो।
2: कौन चीज पूछा गया है?
0: नहीं सुने हो
2: तो बताओ तो फिर से बढ़िया से।
0: हाँ तो सुनो ना।
2: हाँ
0: सुनो। बताई थे?
2: हाँ बतावा जाए।
0: सांपों से भरी एक पिटारी, सबके मुंह में दे चिंगारी, जोड़े हाथ तो निकले घर से, फिर भी घर पर सिर पटके।
2: पहला नंबर के हो माचिस के डिबिया।
0: हाँ
2: और दूसरा कौन चीज है?
0: काला हंडा उज्जवल भा ले लो भैया हाथ है हाथ।
2: तो ये तो सिंगाड़ा हो मियाँ जी।
0: हाँ
2: सिंगाड़ा हो, सिंगाड़ा है
0: सिंगाड़ा।
2: काला हंडा उज्जवल भात उज्जवल रात है।
0: ठीक है तो लास्ट में हम बताइए कर भाई जो सही गलत हुई ना।
2: ठीक है मियाँ जी। तुमने एक जो कव्वाली सुनाई दिया जी।
0: कौन कव्वाली?
2: अरे कुली फिल्म के जो है ना, मुबारक हो आज का महीना।
0: अरे जी कव्वाली तो तुम बहुत दूर सुन भे हो।
2: अरे तो कोनो सुना दिया जी तो सोनू निगम उगम की आवाज में।
0: हाँ कव्वाली बहुत है ना।
2: मोहम्मद अजीज की आवाज में सुनाई दिया जी। कव्वाली तो मोहम्मद अजीज के बहुत है।
0: ठीक है ठीक है। नमस्कार।
2: नमस्ते।
0: हाँ राजीव मौर्या रहा भवानी बगिया से। तो साथी इसे सुने कैसी 4-15 122 के लाइन में आवाज आए कैसे कार्यक्रम जो आप लोगों के घर अंगना दुकान मकान खेत खरियान डाड़ पार देश विदेश हर जगह पर चला था। आप के प्रिय रेडियो किसी सारे FM 94 से जो कार्यक्रम सुना भी जाता है देखा भी जाता है तो शेयर लाइक कमेंट करते रहा जी। साथी कैसे कार्यक्रम बस आप लोगों के रहे कहते वही वाली हाल मुर्दा करनी जिंदा खात तो तैसे है ये सब आप लोगों के हाथे में है तो माँ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक करते रहा जी। साथी तो इसे सुने कैसी 4-15-122 के लाइन में आओ जी। तो इसे दो एक ठोर मैसेज आएगी है, मैसेज पढ़ दी तक ब्रिक के तरफ चले पड़ा। ये मैसेज आवा है, मैसेज भेजे ने संगम टेलर से, मैसेज भेजे ने कृष्णा परियार जी लिखी ने। सबसे पहले मियाँ जी आपका पूरे रेडियो परिवार का प्यार भरा नमस्कार। तो नमस्कार है कहने कोई प्यारा से कव्वाली सुनाई दिया जी हमका कृष्णा परियार के जीने जाने वाले सब साथी लोगन का सुनाओ चाहिए थे। सुभाष का और मोहम्मद अफरोज खान का और शिरीष चौधरी के यहाँ तमाम साथी लोगन का सुनाओ चाहिए है। ऐसे जो दूसर मैसेज है मैसेज आवा है, मैसेज भेजे वाले हैं दोहा कतार से मैसेज भेजे ने राम विलास यादव जी लिखी ने। सबसे पहले मियाँ जी नमस्कार। तो नमस्कार है इन्हों कहने कोई प्यारा से सॉन्ग सुनाई दिया जी सॉन्ग कह लिखी ने। ठीक है आपका हम सुनेबे कहने हमका राम विलास के चिन्हे जाने वाले सब साथी लोगन का सुनाई दिया जी। तो साथी अब हम चली थे पहले व्यापारी विज्ञापन के बाद माँ सुना जी प्यारा से कव्वाली।
3: ओहो घर तो बनाइयो तर आफ्नो मान्छे कोही आयो भने घर पत्ता लगाउने गाह्रो।
4: किन गाह्रो? मार्बल पत्थरमा नाम लेखाएर राखे पनि भइहाल्यो नि।
3: भन्न त सजिलो छ तर कहाँ खोज्न जाने होला?
4: तपाईलाई थाहा छैन नेपालगञ्ज फुलटेक्रा राप्ती रोडमा रहेको न्यू विश्वकर्मा कला सेन्टरमा मार्बल पत्थरमा नाम लेखाउनुका साथै तामा पित्तलमा कम्प्युटरद्वारा नाम लेखाइ गरिन्छ। समिल र सामुदायिक वनको टाचा बनाउनुका साथै विभिन्न किसिमका मार्बल सिमेन्टको मूर्ति पनि पाइन्छ नि।
5: प्रोप्राइटर राकेश कुमार विश्वकर्मा, व्यवस्थापक त्रिभुवन प्रसाद विश्वकर्मा, न्यू विश्वकर्मा कला सेन्टर नेपालगञ्ज 5 बाँके।
6: सम्पर्क टेलिफोन नम्बर 081536410 र 98480 26435।
7: आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू वरिष्ठ फिजिसियन तथा मुटुरोग विशेषज्ञ एसोसिएट प्रोफेसर डाक्टर विकास नेपाल तेजस्वी हट सेन्टरमा आफ्नो सेवाहरू दैनिक रूपमा प्रदान गरिरहनु भएको यहाँहरूमा जानकारी गराउँदछौँ।
8: उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रल, सुगर, मधुमेह, मुटु दुख्ने, हिँड्दा छाती भारी हुने, सास फेर्न गाह्रो हुने, खुट्टा सुनिने, शरीर सुनिने, चक्कर लाग्ने, बेहोस हुने, हर्ट एट्याक, हर्ट ब्लक, मुटुको बाथरोग, मुटुको पेसमेकर हालेको वा हाल्नुपर्ने, एन्जियोप्लास्टी गरेको वा गर्नुपर्ने, बाइपास अपरेसन गरेको वा गर्नुपर्ने, मुटुको भल्भ फेरेको वा फेर्नुपर्ने र रगत पातलो बनाउने औषधि प्रयोग गरिरहेको बिरामीहरूले समयमै सम्पर्क गर्नुहोला।
7: उपलब्ध सेवाहरू
8: ईसीजी, इको, टिएमटी, 24 घन्टे होल्टर, एबिपिएम, ब्लड प्रेसर, सुगर, कोलेस्ट्रोल र मुटु रोग सम्बन्धी सम्पूर्ण जाँच, रगत सम्बन्धी सम्पूर्ण परीक्षणका साथै सम्पूर्ण प्रकारका जाँचहरू गरिन्छ।
7: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 10:30 बजेसम्म, दिउँसो 1 बजेदेखि 2 बजेसम्म, साँझ 4 बजेदेखि 7 बजेसम्म।
8: सम्पर्क नम्बर 081-536-667, 98215-97532। ठेगाना गणेशमान चोक, भेरी अस्पताल जाने बाटो, नेपालगञ्ज।
4: ओहो, हामी बिरामी भएपछि कहाँ जाने त?
9: तपाईँलाई थाहा छैन, नेपालगञ्जको शीतलनगर 10 त्रिशक्ति मन्दिरको सामुन्ने खुलेको छ नि चौधरी सरकार बक्स पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक प्राली।
4: हो र, त्यहाँ सुविधाहरू के रहेछ त?
9: एउटै छाता मुनि विभिन्न सेवाहरू रहेको छ नि, जस्तै डाक्टर संकेत रिसाल फिजिसियन एवं पेट तथा कलेजो रोग विशेषज्ञ, डाक्टर उर्मिला पराजुली रिसाल स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डाक्टर आरके झा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ, डाक्टर दिनेश कुमार चौधरी नाक कान घाँटी एवं टाउको रोग विशेषज्ञ, प्रेक्षा सिंह चौधरी एकुपंचर पद्धतिबाट ठिक हुने रोगहरू, हात खुट्टा नचल्ने, मुख बाङ्गो हुने, बाथ रोग, ढाड दुख्ने, मूर्छा पर्ने र नसा सम्बन्धी सबै रोगहरूको उपचार गरिन्छ।
4: अनकल सेवाहरू
9: नवजात तथा बाल रोग विशेषज्ञ, मृगौला तथा मूत्र रोग विशेषज्ञ, हाड जोड्नी, अर्थोपेडिक सर्जन तथा नसा रोग विशेषज्ञ। प्याकेजमा हेल्थ जाँच गर्ने सुविधा पनि रहेको छ। प्याथोलोजी, भिडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे, ईसीजी, कानको सुन्ने शक्ति थाहा पाउनको लागि अडियोग्रामका साथै रगत, दिसा पिसाब, खकार, थाइराइड, बायोप्सी, कल्चरका एवं सबै प्रकारको हार्मोनको जाँच गरिनुको साथै औषधि सुविधा पनि उपलब्ध रहेको छ।
7: डाक्टर भेट्ने समय सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म बिहान 7:30 बजेदेखि 8:50 सम्म, साँझ 5:15 बजेदेखि 7 बजेसम्म, शनिबार र आइतबार बिहान 9 बजेदेखि 11 बजेसम्म, साँझ 3:30 बजेदेखि 6:30 बजेसम्म।
9: सम्पर्क फोन नम्बर 081-533-719, 98-480-22-229 र 98-605-22-229।
7: कोहलपुर क्षेत्रमा शैक्षिक उत्कृष्टताको केन्द्र बन्दै गएको डाइनामिक बहुमुखी क्याम्पसले गुणस्तरीय र व्यावहारिक शिक्षामा विशेष जोड दिँदै आएको छ। यहाँको अनुशासित वातावरण र विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण पद्धतिले सिकाइलाई सहज र प्रभावकारी बनाएको छ। डाइनामिक बहुमुखी क्याम्पसको मुख्य विशेषता भनेको अनुभवी शिक्षकहरू, अनुशासित वातावरण र अत्याधुनिक डिजिटल शिक्षण पद्धति हो। क्याम्पसले हरेक कक्षामा स्मार्ट बोर्ड मार्फत आधुनिक ढङ्गले अध्यापन गराउँदै आएको छ, जसले गर्दा विद्यार्थीहरूले यस संस्थालाई बढी रुचाउने गरेका छन्। उच्च शिक्षा हासिल गर्न चाहने विद्यार्थीहरूका लागि डाइनामिक बहुमुखी क्याम्पसले व्यवस्थापन संकायतर्फ बिबिएस र शिक्षाशास्त्र संकायतर्फ बिएड कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। यहाँ कम सुलभ शुल्कमै गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिनुका साथै विद्यार्थीको नेतृत्व र व्यक्तित्व विकासका लागि विभिन्न तालिम, सेमिनार र कार्यशाला गोष्ठीहरू नियमित रूपमा आयोजना गरिन्छ। विशेष गरी स्नातक तहको तेस्रो र चौथो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गर्दै पढ्दै कमाउँदै भन्ने अवधारणा अनुरूप रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्ने र रोजगारदाताहरूसँग समन्वय गरी उनीहरूको भविष्य सक्षम बनाउने प्रयास क्याम्पसले गरिरहेको छ। यस संस्थाले विद्यार्थीहरूको सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै बिहान 6 बजेदेखि कक्षा सञ्चालन गर्ने र क्याम्पस भित्रै क्यान्टिनको व्यवस्था गरी सुरक्षित वातावरण प्रदान गरेको छ। 15 वर्षदेखि निरन्तर अध्यापन गराइरहेका अनुभवी प्राध्यापकहरूको संलग्नताले गर्दा यहाँको शिक्षाको गुणस्तर थप सुदृढ बनेको छ। भविष्य निर्माणमा प्रतिबद्ध रहेको यस संस्थाले यस क्षेत्रको शिक्षा क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै विद्यार्थी र अभिभावकहरूको विश्वास जित्न सफल भएको छ।

0: रंगाउ मेरो एवरेस्ट।
1: कौशल्या मेमोरियल हस्पिटल द्वारा एक महीने फ्री ओपीडी सेवा शुरू भएको छ।
2: कोहलपुर 9 हवलदारपुर स्थित कौशल्या मेमोरियल हस्पिटलमा स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा बिहान 9 बजेदेखि बेलुका 4 बजेसम्म एक महिनासम्म फ्री ओपीडी सेवा सञ्चालन भएको छ।
3: प्रदान गरिने सेवाहरू:
1: गर्भवती जाँच सेवा, महिलाको तल्लो पेट दुख्ने समस्या, पाठेघरमा मासु पलाएको समस्या, यौनी चिलाउने समस्या, गन्नाउने सेतोपानी बग्ने समस्या,
2: एप्टोपिक प्रेग्नेन्सी सम्बन्धी समस्या, निसन्तानपन सम्बन्धी समस्या, महिनावारीमा गडबडी,
1: पाठेघरमा हुने क्यान्सर जाँच तथा सम्पूर्ण स्त्री तथा प्रसूति सम्बन्धी समस्याको चेक जाँच तथा उपचार गरिन्छ। यही श्रावण 15 गतेदेखि भाद्र 15 गतेसम्म फ्री ओपिडी सेवा सञ्चालन हुने भएकाले सबैमा जानकारी गराउँदै सेवा लिनका लागि अनुरोध छ।
2: सम्पर्क कौशल्या मेमोरियल हस्पिटल, कोहलपुर 9 हवलदारपुर बाँके। सम्पर्क फोन नम्बर 081-41-40-07 र 98-482-63-399।
4: माया बाबु, टेलर के त सक्कु सामान हो गेल बा, अब मसिन कहाँ से नन्ना हो?
5: छी दादु, हो फे ठाहानी हो कि का उह त हो जे बीएस सिलाई मशीन सप्लायर्स।
4: बीएस सिलाई मशीन सप्लायर मा कौन कौन मेर के मशीन पैठे बाबु?
5: उहाँ त अनमोल, उषा ओ ताज ब्रांड का संग मेरमेरी कंपनी का सिलाई मशीन बिक्री ओ मरमट कई जिठा। एक रख संग मशीन संबंधी सक्कु पाठ पुर्जा ओ सामान फे पा जिठा। अट्रगेल कहाँ हो? कुशल कारीगर हुकन से मरमट फे करा जिठा।
6: एक संगे दस्या देवारी हो, छठ त्योहार समय 5-30% समय ग्राहक उपकरण के छूट के व्यवस्था कैल बा।
4: बीएस सिलाई मशीन सप्लायर, घरबाई टोल 2, पीपल चौतरा, नेपालगंज बाके। एक बेर सेवा करे के मौका जरूर देबी। प्रोप्राइटर भरत सिंह परियार। मोबाइल नंबर बा 98-481-28-318 और नंबर बा 98-224-52-478। एक बेर सेवा करे के मौका जरूर देबी।
7: पिछले सारे फिल्म लगाए जो हमार पिया, पिछले सारे फिल्म लगाए जो हमार पिया।
8: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज, कृष्णसार जस तेज।

0: रंग बहार रंग बहार
1: बर्जर संगे उपहार उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियार
0: बर्जर पेंस ले घर रंगाउनु होस् र लकी ड्र मार्फत यामाहा रेजियार 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्
1: साथै 65 इंच को स्मार्ट टीवी रेफ्रिजरेटर वाशिंग मशीन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहारहरु पनि घर रंगाउ खुशी बनाउ उपहार जित्ने अवसर पाउ
0: बर्जर पेंस
2: बीर डेंटल
3: नेपालगंज शहर में संचालित अत्याधुनिक सुविधा संपन्न बीर डेंटल में दांत तथा मुख संबंधी संपूर्ण उपचार काठमांडू तथा भेरी अंचल अस्पताल का अनुभवी वरिष्ठ डाक्टर आर के लामिछाने द्वारा उपचार गरिन्छ।
4: डाक्टर लामिछाने द्वारा गरिने विशेष उपचारहरू दाँत सफा गर्ने, दाँत भर्ने, दाँत निकाल्ने, दुखेको दाँतको जराको उपचार, खाली ठाउँमा दुरुस्त प्राकृतिक जस्तै नक्कली दाँत राख्ने, बाङ्गो टिङ्गो तथा नमिलेको दाँत फिक्स अर्थोडन्टिक प्रविधिद्वारा मिलाउने, गिजाको रोग जस्तै गिजा सुन्निने, रगत आउने, पिप बग्ने, मुख गनाउने र दाँत हल्लिने समस्याको उपचार, पहेलो खैरो दाँत, सानो र ठुलो दाँत, छिद्रा तथा ग्याप भएको दाँतलाई कस्मेटिक उपचार प्रविधिद्वारा राम्रो बनाउने, दाँत मुखको चोटपटक तथा बङ्गारका हड्डी भाँचिएको पनि उपचार हुने।
3: सम्पर्क बीर डेन्टल क्लिनिक भेरी अञ्चल अस्पतालबाट 150 मिटर त्रिभुवन चोक तर्फ।
4: फोन नम्बर 081-532-375। नेपालकै एकमात्र अत्याधुनिक डेन्टल क्लिनिक अब नेपालगंजमा। सन् 2016 डाक्टर लियोनार्ड लिङको फाउन्डेसनद्वारा बेस्ट डाक्टर अवार्डद्वारा सम्मानित डाक्टर प्रतीक श्रेष्ठ, एनएमसी 19393, बीडीएस दिल्ली, एफएजीसी मणिपाल, सर्टिफाइड इम्प्लान्ट एन्ड लेजर डेन्टिस्ट्री अमेरिका, सर्टिफाइड बोटक्स एन्ड फिलर स्पेसलिस्ट युरोप, एडभान्स सर्टिफिकेट इन जेनरल डेन्टिस्ट्री क्यानाडा, मिनी रेजिडेन्सी इन इन्डो डेन्टिक्स साउथ कोरिया, यी विभिन्न देशहरूमा अध्ययन गरेका डाक्टर प्रतीक श्रेष्ठद्वारा उपचार गरिने अत्याधुनिक डेन्टल क्लिनिक अब नेपालगंजमा।
3: विशेषताहरू: दुखेको दाँतहरू जराबाट नै भरेर नदुख्ने बनाउने, बच्चाहरूको दुखेको दाँत जराबाट भर्ने, किरा लागेको दाँतलाई भर्ने, दाँत निकाल्ने, दाँतमा खोल लगाउने र दाँत नभएको ठाउँमा दाँत हाल्ने, मेटल क्राउन, बाङ्गो दाँतलाई तार बाँधेर सिधा गर्ने, वृद्ध अवस्थामा भएको बुढाबुढीको पुरा दाँतको सेट लगाउने, दाँतलाई प्रत्यारोपण गर्ने, चाउरी परेको अनुहारलाई राम्रो पार्ने, आँखा तल खाल्टो भएकोलाई भर्ने, सबै उपचारहरू दूरपिनबाट गरिने, डिजिटल एक्सरे सेवा।
5: सम्पर्क गणपति क्लिनिक सुर्खेत रोड नेपालगंज नर्सिङ होम नजिकै कुसुम पेट्रोल पम्पको सामुन्ने पासङलाम रोड जाने बाटोमा। फोन नम्बर 081-531-366 र 98-085-49-451।
6: एनसेल प्याक किन्नु भयो त? जहिले पनि जहाँ पनि प्याक खरिद गर्नुहोस् अनि 20% सम्म क्याश फिर्ता एनसेल एपमा क्लेम गर्नुहोस्। एनसेल प्याक किन्नु भयो त? शर्तहरू लागू हुनेछन्। एनसेल नेपालकै लागि।
7: ओहो, आज डाइह नै मजा लागत हो। मजा से दवाई करेना कहटु।
8: ए तो ओकर लाग कान्ति आरोग्य अस्पताल जाइन। पश्चिम नेपालकै अनुभवी व उत्कृष्ट विशेषज्ञ चिरफारकैना डाक्टर से विश्वासिलो स्वास्थ्य सेवा यही कान्ति आरोग्य अस्पताल नेपालगंजमा मिलत।
7: ए बात त ठिक कैलो, साच्ची कि अस्पतालमा का सुविधा मिलत त?
8: उहाँ त 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा, दैनिक ओपिडी सेवा, दूरबीन ओ लेजर प्रविधि से शल्यक्रिया, जरल घाउ उपचार करना संगे एनआईसीयू, पीआईसीयू, आईसीयू, हाईटेक अपरेशन थिएटर हो, सुरक्षित प्रसूति सेवा फे उहाँ पा जाइत। छोट बच्चा हो, भर्खर जन्मल बच्चन के सामान्य से लैके जटिल रोग संगे सकु प्रकार के रोग के उपचार फे उहाँ कै जाइत।
7: ए ओसिनो कला से उहाँ जाई मन फे ढुक्क हुइना चाहल रह।
8: हो तो स्वास्थ्यक हेरचाह कहले ठीक ठाउँ रोजना हो। कान्ति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगंज, सक्कुमेरिक उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा अक्क ठाउँमा। सम्पर्क नम्बर 081-535-717। कान्ति आरोग्य अस्पताल, अपने हुकरन के स्वास्थ्य हमारी स्नेहा।
9: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई?
10: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र जाओ न। यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगन के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देत हैं। और साथ लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करत हैं। साथ कान कम सुने वाले बीमारी लोगन के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगन के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसे मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
9: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो।
10: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेवा केंद्र प्राली नेपालगंज छ फुलटेकरा आर्मी ब्यारेक के सामने राप्ती रोड बांके संचालक पूरन चौधरी संपर्क नंबर 98480-2697 98580-2697 और 98014-83697 बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।

0: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस्तेज।
1: कौन है रात में भी परेशान करते हैं, सुकून नहीं है, किसका फोन है? हेलो
2: हेलो
1: कौन?
2: हेलो
1: हेलो कौन?
2: मैं बोल रहा हूँ टीना।
1: कौन?
2: मैं बोल रहा हूँ तुम्हारा पहला आशिक।
1: पहला आशिक? आपने कौन सा नंबर डायल किया है?
2: मैंने 248094, ये आपका नंबर है ना?
1: नंबर तो सही है। आपने किससे बात करनी है?
2: टीना परवीन से
1: बोल रही हूँ। आप?
2: मैं आरिफ बोल रहा हूँ।
1: आरिफ? आरिफ? तुम्हारी इतनी हिम्मत के रात में तुमने मेरे घर फोन किया?
2: इसमें हिम्मत की क्या बात है, हम तो तुम्हारे आशिक हैं, कभी भी कर सकते हैं।
1: अरे आशिक की ऐसी की तैसी, मैं फालतू लोगों से बात नहीं करती, समझे?
2: मैं फालतू आपकी नजर में?
1: बिल्कुल
2: मैं आशिक हूँ आपका, फालतू नहीं हूँ।
1: अरे ऐसे आशिक 365 सड़कों पे फिरा करते हैं।
2: नहीं नहीं मेरी बात तो सुनो टीना, मेरा कहना है कि मैं देहरादून आया हुआ हूँ,
1: तो
2: तुम भी आ जाओ, मजा।

0: पहनेंगे।
1: अच्छा लेकिन मैं जो कह रहा हूँ ये तो सुनिए तो।
0: क्या?
1: मेरे नहीं बल्कि आप जो पहने मैं आपके बिकवा दूंगा।
0: ओए होए, ख्वाब है ख्वाब, बोलो बोलो।
1: नहीं ख्वाब नहीं, हकीकत है, सुनिए क्या कहना है।

0: करोगी क्या?
1: फोन नंबर बताएं आप।
0: नहीं, मेरा घर का नंबर चाहिए।
1: हाँ हाँ, जो पर्सनल है।
0: बताइयों का?
1: हाँ।
0: लिख लीजिए, मेरा नंबर है 2। गलत बताऊं या सही?
1: सही।
0: नहीं सही, चलिए अच्छा सही नंबर बताता हूँ आपको।
1: हाँ।
0: सही नंबर लिखिए 34208 और 34209, ये दोनों मेरे नंबर हैं।
1: अच्छा, अच्छी बात है, बहुत अच्छा है क्या बता के। अब देखो मैं क्या करती हूँ।
0: क्या करोगी?
1: हाँ देखो, कहना है
0: क्या?

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 2 बजेको छ।
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी।

0: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस तेज।
1: हमका बिहा के खातिर सोफा दराज डाइनिंग जस सामान और ऑफिस के खातिर सामान खरीदे के रहा है, कहाँ जाई तो ठीक रही, तनी बताई दियो हमका।
2: सुना जाए आपका हम बताई थे, आप नेपालगंज में यहाँ अपने घर के खातिर, ऑफिस या तो दुकान के खातिर गुणस्तरीय फर्नीचर खरीदे चाह जाते तो अर्बन फर्नीचर एंड फर्निशिंग हब प्राली में यहाँ जावा जाए। हुआ पर यहाँ ऑर्डर के अनुसार बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ऑफिस टेबल, ड्रेसिंग टेबल, दराज जस तमामन मेर के फर्नीचर के सामान मिलत है। उके साथन टिकाऊ सामान, आकर्षक डिजाइन और उत्कृष्ट फिनिशिंग के साथन बनावा भी जात है।
1: किफायती मूल और मैत्रीपूर्ण सेवा के साथन आपकी आवश्यकता के हिसाब से फर्नीचर तैयार किया जात है।
2: एक दफे सेवा करे मौका दीन जाए। संपर्क के खातिर सुरखेत रोड नेपालगंज बांके संपर्क नंबर 9844885375 और 9808254037।
3: नींद ना आए हमको हाए जग सोता
1: है। भैया बहुत दिन से महिनवारी में यहाँ गड़बड़ी, सफेद पानी बहाव और पेट पीराव समस्या से बहुत दुख पाए चुके हैं, कहाँ जाए तो बढ़िया रही।
4: हम भी पहले गैस्ट्रिक, बवासीर और पेट के समस्या से बहुत परेशान रहे, बाद में यहाँ नेपालगंज के मेडिकेयर क्लिनिक गए। हुआ मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के समस्या के उपचार और ऑपरेशन एक ही जगह होत है। अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर से सेवा मिले के बाद अब बहुत आराम हुआ है।
1: सही, हुआ का सेवा मिलते है तो भैया
4: सुनो। हुआ औरतन के बांझपन, सफेद पानी, महीनावारी में गड़बड़ी, गर्भवती जांच, बच्चादानी और स्तन संबंधी समस्या के उपचार होत है। और पुरुष या अन्य बीमारी लोगों के खातिर गैस्ट्रिक, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, थायराइड, पित्त थैली और शरीर में यहाँ गिल्टी और तमाम मेर के लैप्रोस्कोपिक और लेजर सर्जरी सेवा भी उपलब्ध है।
5: हाँ, मेडिकेयर क्लिनिक में यहाँ वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक दूरबीन और लेजर सर्जन डॉक्टर कमर हसन अंसारी और वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक स्त्री और कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमीरुन निशा से सेवा देते हैं। आप भी आज कोई भी चेक जांच और ऑपरेशन के खातिर नाम दर्ता करके तहे दिल हुआ जाए।
4: मेडिकेयर क्लिनिक नेपालगंज उप महानगर पालिका वाड़ा नंबर 11 बीपी चौक के नेरेन उप महानगर पालिका के कार्यालय के लाइन में यहाँ। संपर्क नंबर 9749117886982242
6: सबके संयुक्त आवाज मेडिकेयर क्लिनिक मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के स्वास्थ्य उपचार के विश्वसनीय गंतव्य।
7: सोचे भन्दा सस्तोमा हाई क्वालिटी का सोफा र फर्निचर चाहियो, आउनुहोस् सोफा हब नेपालगंज।
8: हरेक सामान को खरीद में 1,000 देखि 20,000 सम्म छूट, 10 देखि 15 वर्ष सम्म को वारेंटी, साथ ही फ्री डेलीवरी को सुविधा पनि। अहिले थमाथम बिक्री भइरहेको छ।
7: स्थान राजा चोक राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक को अगाडि।
8: संपर्क 9705118470।
7: सोफा हब नेपालगंज,
8: विश्वास में नंबर 1,
7: क्वालिटी में सब भन्दा बेस्ट।
9: एनसेल प्याक किन्नु भए त जहिले पनि जहाँ पनि प्याक खरीद गर्नुहोस् अनि 20% सम्म क्याश फिर्ता एनसेल एपमा क्लेम गर्नुहोस्। एनसेल प्याक किन्नु भए त शर्तहरू लागू हुनेछन्। एनसेल नेपालकै लागि।
1: खुशी के खबर, हम लोगन के अपने शहर नेपालगंज में यहाँ सालों से सेवा देते आवा रहा नेपालगंज नेशनल अस्पताल में यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर लोगन से दैनिक रूप में यहाँ तमामन स्वास्थ्य सेवा प्रदान होते आवा है।
4: ये अस्पताल में यहाँ दैनिक रूप से तमाम मेर के विशेषज्ञ लोगन से ओपीडी सेवा हो, एक साथ तमाम मेर के सेवा होत रहा जानकारी करावा चाहा जात है। जैसे सर्जरी संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: प्रसूति और महिला लोगन संबंधी संपूर्ण इलाज,
4: नस और हड्डी रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: मस्तिष्क और मानसिक रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
4: चर्म रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: नाक कान और गटई संबंधी संपूर्ण इलाज,
4: शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, पेट, छाती, कलेजा संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: पैथोलॉजी लैब संबंधी संपूर्ण चेक जांच किया जाते है,
4: वीडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे और संपूर्ण सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पताल के साथ हैं। हर एक महीना के अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल से शुगर और थायराइड रोग के इलाज के खातिर डॉक्टर सुमन बराल आवश्यक जानकारी भी करावा जाता है।
1: नोट, ई अस्पताल में यहाँ कार्यरत संपूर्ण डॉक्टर लोगन से प्रत्येक महीना के अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा ले साथ ही जांच में यहाँ 20% छूट के व्यवस्था किया गया है।
4: सम्पर्क नम्बर 081-536-465, 98-249-80-665 और 98-482-80-465।

0: हाँ तो श्रोता जो छोटा सा व्यापारी विज्ञापन प्यारा से कवाली सुनागा, कोई साथी फोन लाइन में है, पहले उनका स्वागत कर लिए। नमस्कार नमस्कार नमस्ते नमस्ते, आपके नाम? महेश कोरी। और महेश अच्छा है?
1: ठीक है मियां जी, सब बढ़िया।
0: कहाँ ड्यूटी में हो?
1: हाँ ड्यूटी में हूँ मियां जी।
0: कार्यक्रम सुना था शुरू से?
1: कार्यक्रम तो सुना है मियां जी।
0: कहीं जोर से बोलो तो आता हो जो नहीं आता कि भूखान हो?
1: नहीं कहीं से कार्यक्रम तो सुना है मियां जी।
0: अच्छा हाँ बाबा, आप तनी जब यहाँ से कर्री पड़ा है तब बाहर से आवाज निकल रहा है। हाँ क्वेश्चन के उत्तर दे।
1: एक नंबर तो है माचिस।
0: हाँ
1: और एक तो कच्चा नारियल।
0: कच्चा नारियल ठीक है। नमस्कार नमस्कार
1: नमस्कार नमस्कार।
0: हाँ साथी महेश कोरी रहा जो ये राष्ट्रीय बैंक के ठीक सामने से नेपाल दम्बोजी से। कोई साथी हमारे फोन लाइन में आए हैं गए कि हैं देखी? हाँ हाँ उनका स्वागत के लिए। नमस्कार वालेकुम।
2: भाद्रा सिंह शिरपाली बोले थे तो। हाँ दोस्त
0: और हो भादरा सिंह शिरपाली और सब अच्छा है?
2: बढ़िया है।
0: खाना खाए?
2: हाँ जी
0: खाना खाए।
2: खाना तो 9-10 बजे खाँसी तो मैंने सब
0: क्या को तुम खाए हो?
2: क्यों ना जा
0: हाँ
2: दाल थी दाल अड़हरी को डल्ले खुर्सानी
0: कस्तो मीठो है ना।
2: हजुर
0: मेरे तो मुख रसाई गयो।
2: आउने ना
0: कहाँ त्यस्तो यस्तो फोन गरे संसारै को सामने बुलाए को आउँछ त लाज लाग्दैन?
2: लाज फेरि आएन नबनेर आउनु फेरि
0: हाँ
2: लेडिज बनेर न आउनु होला जेन्ट्स बनेर आउनु होला नि।
0: अब म छलिया बनेर आउँछु। छलिया
2: बैंकर हाकिम भैयाली।
0: हाँ भद्रा जी
2: हजुर,
0: दुनिया की ऐसी की तैसी है, मेरे उत्तर का जवाब दो।
2: तो जवाब बोलिए ना प्रश्न, जवाब देने के लिए तैयार है।
0: नहीं सुना है आपने?
2: नहीं नेपाली में बोलिए ना तो हिंदी में वो थोड़ा गड़बड़ाएगा नहीं समझ पाया।
0: हाँ तो हिंदी में क्यों नहीं समझ पाया? तो हिंदी में बोलते हो नेपाली अवधि कार्यक्रम हम नेपाली के
2: नहीं ठीक है हमारे खातिर नेपाली में बोल दो।
0: हाँ जैसे सांपो से उठा भरे को पेटारी।
2: हजुर
0: सांप को एउटा भरे को पेटारी।
2: हजुर
0: हाँ सब को मुख में दिन्छ चिंगारी। जोड़ू हाथ तो निकली घर से फिर भी वो घर पे सिर पटके। एक नंबर में दुई नंबर में छा काली हंडी छा सेतो भात ले लुनु दाजू भाई हाथ है हाथ।
2: ये दुई नंबर को सिंगाड़ा
0: सिंगाड़ा।
2: एक नंबर को सलाई कोरेर चुरोट खाको
0: ले ठीक छ।
2: हजुर
0: पछाडी सिकाउने को हो?
2: कोले सिकाएन यहाँ सब नेपाली मात्र छ बेसी छैन कोही पनि।
0: नै त्यहाँ कोही बोलिए राछ नि तिमीले सिकाछ?
2: ए धनबहादुर हो।
0: धनबहादुर
2: धनबहादुर त अनपढ हो।
0: को हो?
2: अनपढ तपाईको साथी।
0: अनपढ हो?
2: अनपढ त हो नि।
0: को अनपढ? नाम के हो?
2: धाने बुढा।
0: ल त नमस्कार
2: नमस्कार। एक कव्वाली बजाए दे।
0: ठीक छ ठीक छ।
2: एक कव्वाली।
0: हाँ हाँ हम बजाए देवे। हाँ हमरे रहे भद्रा सिंह शिरपाली सी गाँव बाके से खजुरा गाँव पालिका से ओ दीवानी ओ मस्तानी आइटम बम है तेरी जवानी, मार ना मुझ पे नजरिया गोरी, बाकी बात तोरी उमरिया। कवाली जो हमरे धन बहादुर के फरमाइश के है, भद्रा सिंह के। ऐसे मैसेज भी आएगा है, मैसेज भेजी नहीं हमरे मस्त राम पाठक जी नो कहने ओ दीवानी ओ मस्तानी कवाली बजाए दिया जी। हाँ जैसे राजकुमार मिश्रा हैं, ऐसे मस्त राम पाठक कह के गीता संगीता हैं, राम गोपाल हैं और तमाम साथी हैं। ऐसे शिव मंदिर चौराहा से जो मैसेज भेजी ने, पान के दुकान से छंगा पान वाले इन्हों लिखी ने, मियाँ जी नमस्कार। तो नमस्कार है, इनके कार्यक्रम कहने की बहुत अच्छा लगा था मियाँ जी आपके कार्यक्रम, जितना भी तारीफ किया जाए उतने कम है। और कहने की अभिषेक बजे वाला कोई भी कव्वाली सुनाए दिया जी, विशेष कह के अपने हम राजकुमार राजू कहीं सुनाओ चाहे थे, हमका छंगा पान वाले के चिन्हे जाने वाले सब लोग। कैसे पूरन वर्मा जो बीज भंडार से मैसेज भेजी ने, इन्होंने लिखी ने, सबसे पहले मियाँ जी आपका पूरे रेडियो परिवार का प्यार भरा नमस्कार। तो नमस्कार है, काल मियाँ जी कन्हैया अष्टमी है, कन्हैया अष्टमी के आपका बहुत बहुत बधाई है, धन्यवाद है आपका कन्हैया अष्टमी के, आपके भी कन्हैया अष्टमी के बहुत बहुत बधाई। तय कहने हमका पूरन वर्मा कहके चिन्हे जाने वाले जितने साथी संगी हैं सब लोगन का सुनाए दिया जाई। ऐसे शिवानी ग्रिल उद्योग से जो मैसेज भेजी ने, जो राय मैसेज भेजे वाले हैं ये लिखी ने, सबसे पहले मियाँ जी नमस्कार। तो नमस्कार है विजय कुमार वर्मा जी, कहने के अभिषेक बजे वाला कोई भी प्यारा से कव्वाली सुनाए दिया जी, हमका विजय कुमार वर्मा कहके चिन्हे जाने वाले सब लोगन का सुनाओ चाहते है, खेमराज सोनखर का और अपने घर परिवार का साथी संगी का, जत्ते वारकर लोग हैं हमरे यहाँ के कारीगर मिस्त्री लोग जो झाल पल्ला दरवाज़ा सब बनावत हैं लोहे के, उनका लोगन का धन्यवाद है। ऐसे दूसर मैसेज है, मैसेज भेजी ने नान बाबू पहुना पान भंडार से जो ये खजुरा बाजार से, इन्हों लिखी ने मियाँ जी नमस्कार। तो नमस्कार है, इन्हों कहने कोई प्यारा से कव्वाली सुना दिया जी, ठीक है हम आपका कव्वाली सुनेबे। कहने हमका नान बाबू कहके चिन्हे जाने वाले सब साथी लोगन का, अपने घर में अपने घर के जितने सदस्य हैं सब लोगन का सुनाओ चाहते। तो साथी अब हम चले थे पहले छोटा सा व्यापारी विज्ञापन के बाद माँ सुना जी, ओ दीवानी ओ मस्तानी आइटम बम है तेरी जवानी।
3: अब सुन्नुहोस् श्री स्टील्स रेडियो कथा तेस्रो तथा अन्तिम भाग। शर्माजीको घरलाई भूकम्पले हल्लाइरहेको छ, झ्याल बाहिर धुलोले ढाक्छ, बत्ती फोन सबको लाइन काटिन्छ, सब धेरै डराएका हुन्छन्। तर एकछिनमा भूकम्प रोकिन्छ। शर्माजीले श्री एफई 550D ले बनाएको घरलाई फेरि केही भएको हुँदैन, अनि त्यसपछि शर्माजीको परिवारको जिन्दगी ढुक्कले चल्न थाल्छ। अनि वर्षौँ पछि फेरि एक दिन ठुलो भूकम्प आउँछ। श्री एफई 550D सर्वोत्कृष्ट भूकम्प प्रतिरोधक स्टील।
4: वाउ, प्लस टू परीक्षा पनि पास भयो, अब कुन कलेजमा भर्ना हुने होला?
5: ल है बधाई छ। अनि तिम्रो उज्जवल भविष्यका लागि उत्कृष्ट विकल्प नेपालगञ्ज बहुमुखी क्याम्पस NMC छ नि।
4: ए हो र, त्यहाँ के पढ्न पाइन्छ त? अनि त्यहाँको विशेषता पनि भन्देऊ न।
5: त्यहाँ ब्याचलर अफ बिजनेस स्टडिज BBS तथा ACCA कार्यक्रमका लागि भर्ना खुल्ला भइसकेको छ। दक्ष तथा अनुभवी शिक्षकद्वारा गुणस्तरीय शिक्षण, वातानुकूलित AC कक्षा कोठा, समृद्ध पुस्तानुकूलित AC कक्षा कोठा, समृद्ध

0: आए। टीना जी, कभी
1: कभी
0: तो काम यारब जज्बे एहसास आ जाए।
1: अच्छा।
0: और ये जालिम, ये जालिम जो टीना है ना,
1: जालिम,
0: हाँ,
1: अच्छा जालिम,
0: ये जालिम,
1: अरे जालिम,
0: खुद ब खुद घबरा के मेरे पास आ जाए।
1: ओ, बैटरी डाउन हो गई क्या?
0: मेरे पास आ जाए। और शकील, कौन से शकील?
1: मुझे क्या मालूम?
0: नहीं, बदायूं के जो हमारे बहुत मशहूर शायर हुए हैं ना।
1: अच्छा, अच्छा,
0: वो कह रहे हैं, कभी तो काम यारब जज्बे एहसास आ जाए, ये जालिम खुद ब खुद घबरा के मेरे पास आ जाए।
1: अच्छा।
0: और शकील, अपनी मोहब्बत ढूंढता हूँ जर्रे जर्रे में।
1: अच्छा।
0: तमन्ना है कि मेरी चीज मेरे पास आ जाए।
1: ओहो।

0: कहा है कि जिगर को कर गई घायल, तेरी निगाहें सितम, इलाज खूब किया तूने दर्दे दिल का सनम।
1: अच्छा।
0: आतिशे इश्क कलेजे में दबी रहती है और टीना तुमने जिस दिन से लगाई है लगी रहती है।
1: अच्छा।
2: टीना जी, सुना आपने, ये तस्लीम भाई क्या कह रहे हैं?
1: क्या
2: ये कह रहे हैं कि तुमने जिस दिन से लगाई है इनके लगी रहती है, लेकिन
1: अच्छा।
2: हम क्या कह रहे हैं आपसे जरा सुनिएगा।
1: क्या कह रहे हैं?

0: रहते हैं।
1: अच्छा, लेकिन देखिए फिराक गोरखपुरी क्या कह रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। कहना है कि ऐ मरीज इश्क, ये जुर्रत कहाँ से आ गई?
2: लखनऊ से आ गई।
1: ओहो, बदायूं से नहीं आई?
2: बदायूं में कहाँ है,
1: बदायूं में जुर्रत ही नहीं है।
2: जितनी जुर्रत है सब लखनऊ में है।
1: अच्छी बात है, इसलिए कहना है मेरा
2: क्या

0: और हम हसीनों से तूने नजर जो मिलाई तो मिट्टी में तेरी जवानी मिलेगी।
1: वो तो खैर बात की बात है, जब मिलेगी तो मिल जाएगी। अभी आप कहिए जो कुछ कहने जा रही है, कह डालिए।
0: मिल रही है, इसीलिए मैं कह रही हूँ आपसे समाप्त फरमाएं।
1: क्या कह रही है?

0: हाम्रो बिहे भएको पनि 8 वर्ष भइसक्यो। सबैले एउटै प्रश्न सोध्छन्, खुसीको खबर कहिले सुनाउने भनेर।
1: मलाई थाहा छ तिमी कति पीडामा छौ, तर हामीले अहिले आशा मार्नु हुँदैन।
0: कति अस्पताल धायौ, कति उपचार गरायौ, अब त सपना पनि अधुरै रहने हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ।
1: होइन, हामीसँग अझै आशा छ। मैले शुभश्री आइबिएफ क्लिनिकको बारेमा धेरै सुनेको छु, जहाँ धेरै दम्पतिहरूको काख भरिएको छ।
2: सन्तान सुखको यात्रामा तपाईँको भरोसाको साथी शुभश्री आइबिएफ क्लिनिक, अनुभवी विशेषज्ञ चिकित्सक, आधुनिक प्रविधि र व्यक्तिगत हेरचाह सहित।
0: हाम्रो जीवनमा पनि आखिर त्यो दिन आयो।
1: धन्यवाद शुभश्री आइबिएफ, हाम्रो सपना साकार बनाइदिनु भएकोमा।
2: थप जानकारीका लागि शुभश्री आइबिएफ क्लिनिक, सोल्टीमोड, काठमाडौँ, फोन नम्बर 98 61 14 16 99।
3: हाय, के गर्ने होला अब, सुगर पनि बढ्दैछ, थाइरोइडको समस्या अझ छुट्टै छ, कति ठाउँमा देखाएँ तर भएन।
4: ए, तिमी यति चिन्तित किन, के भयो फेरि?
3: के भने नि, डाक्टरले मलाई हार्मोनको समस्या छ भन्नुभयो, अनि त्यसैमा बच्चा नहुँदा मलाई झन् टेन्सन भइरहेको छ।
4: ए, अब चिन्ता लिनु पर्दैन, मैले राम्रो खबर सुनेको छु।
3: कस्तो खबर?
4: अब प्रत्येक दिन सुगर, थाइराइड तथा हार्मोन रोगका विशेषज्ञ डाक्टर अल्ताबान राही, एमडी इन्टरनल मेडिसिन टियु, एन्डोक्राइनोलोजिस्ट सर गङ्गाराम हस्पिटल दिल्ली यहाँ नै सेवा दिनुहुन्छ।
3: ए, साँच्चै?
4: अझै सुन, महिला बाझोपन तथा निसन्तान रोग सम्बन्धी पनि प्रत्येक दिन चेक जाँच तथा परामर्श सेवा पनि उपलब्ध छ।
3: ए, त्यो त झन् राम्रो
4: हो नि। डाक्टर पुनम आचार्य एमबिबिएस, एमडी केयु, आइभीएफ स्पेसलिस्ट इन्डिया र डाक्टर सुरज राज भट्टराई एमबिबिएस, एमएस केयु, वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट जनरल तथा ल्याप्रोस्कोपिक सर्जनबाट सेवा पाइन्छ।
3: वाह, अब त मलाई धेरै ढुक्क लाग्यो।
4: अझै अरू सेवाहरू पनि छन्, दैनिक ओपिडी सेवा, गुणस्तरीय फार्मेसी सेवा, भिडियो एक्सरे, एक्सरे, इसिजी तथा सम्पूर्ण प्याथोलोजी सम्बन्धी जाँच सेवा।
3: यो त पुरा प्याकेज जस्तै भयो नि।
4: हो त, अब ढिला नगर, जाऊ आजै गइहाल उपचार गर्न।
3: हजुर, आजै सम्पर्क गर्नुहोस् सुपर पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, बिपी चोक, नेपालगञ्ज। फोन नम्बर 081-531-860 र 081-531-861।
4: अब चिन्ता होइन, समाधानको सही ठाउँ सुपर पोलिक्लिनिक।
5: नाक कान र घाँटीका रोगीहरूको लागि विशेष सूचना।
6: भेरी अञ्चल अस्पतालमा लामो समय काम गरे सेवा निवृत्त प्रमुख कन्सल्टेन्ट, ईएनटी विशेषज्ञ डाक्टर रमेश कुमार श्रेष्ठ र हाल भेरी अञ्चल अस्पतालमा नाक कान घाँटी विभागमा कार्यरत ईएनटी कन्सल्टेन्ट डाक्टर सगुन श्रेष्ठसँग उपचारको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्जमा हप्ताको 7 दिन सेवा उपलब्ध छ। हाम्रा थप सेवाहरू एक्सरे, इन्डोस्कोपी, प्रयोगशाला, अडियोग्राम तथा आवश्यक परेको खण्डमा बिरामीलाई अपरेसनको पनि व्यवस्था छ। विस्तृत जानकारीको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्ज, सम्पर्क फोन नम्बर 081-531-380, मोबाइल 98-580-30-479 र 98-480-21-380।
7: ओहो, आज डाइह नै मजा लागत हो, मजासे दवाई करे ना कहटु।
8: ए, तो ओकर लाग कान्ति आरोग्य अस्पताल जाइन, पश्चिम नेपालके अनुभवी व उत्कृष्ट विशेषज्ञ चिरफार कैना डाक्टर से विश्वासिलो स्वास्थ्य सेवा यह कान्ति आरोग्य अस्पताल नेपालगञ्जमा मिलत।
7: ए, बाट ठिक कैलो, साँच्ची कि अस्पतालमा का सुविधा मिलत?
8: उहाँ त 24 घन्टा इमर्जेन्सी सेवा, दैनिक ओपिडी सेवा, दूरबीन ओ लेजर प्रविधि से शल्यक्रिया, जरल घाउ उपचार करना संगे एनआईसीयु, पीआईसीयु, आईसीयु, हाईटेक अपरेशन थिएटर हो, सुरक्षित प्रसूति सेवा फे उहाँ पा जाइत। छोट बच्चा हो, भर्खर जन्मल बच्चन के सामान्य से लैके जटिल रोग संगे सकु प्रकार के रोग के उपचार फे उहाँ कई जाइत।
7: ए, ओसिनो कला से उहाँ जाई मन फे ढुक्क हुइना चाहल रह।
8: हो तो, स्वास्थ्य हेरचाह कहले ठीक ठाउँ रोजना हो, कान्ति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगंज सक्कुमेरिक उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा अक्क ठाउँमा सम्पर्क नम्बर 081-535-717 कान्ति आरोग्य अस्पताल अपने हुकरन के स्वास्थ्य हमार स्नेह
9: बाबा के कान पिरात है दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई
10: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र जाओ न यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है यतन कहाँ यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा जीर्ण रोग कान में यहाँ ढूसी भवा कान खजुआब कान से कम सुनाई देव कान बंद हो बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा कान के जाली में छेद भवा कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करत हैं साथ ही कान कम सुनने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है बीटी सीआईसी आरआईसी जैसे मशीन भी यहाँ उपलब्ध है
9: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो
10: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे दवाई दरमत संभव है बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेवा केंद्र प्राली नेपालगंज फुलटेकरा आर्मी ब्यारेक के सामने राप्ती रोड बांके संचालक पूरन चौधरी संपर्क नंबर 98-480-2697 98-580-2697 और 98-014-83-697
9: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहां सहभागी हुआ जाए नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए खुशी के खबर हम लोगन के अपने शहर नेपालगंज में यहाँ सालों से सेवा देते आवा रहा नेपालगंज नेशनल अस्पताल में यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर लोगन से दैनिक रूप में यहाँ तमामन स्वास्थ्य सेवा प्रदान होते आवा है
10: ये अस्पताल में यहाँ दैनिक रूप से तमाम मेर के विशेषज्ञ लोगन से ओपीडी सेवा हो एक साथ तमाम मेर के सेवा होता रहा जानकारी करावा चाह जाता है जैसे सर्जरी संबंधी संपूर्ण इलाज
9: प्रसूति और महिला लोगन संबंधी संपूर्ण इलाज
10: नस और हड्डी रोग संबंधी संपूर्ण इलाज
9: मस्तिष्क और मानसिक रोग संबंधी संपूर्ण इलाज
10: चर्म रोग संबंधी संपूर्ण इलाज
9: नाक कान और गटई संबंधी संपूर्ण इलाज
10: शुगर ब्लड प्रेशर हृदय रोग पेट छाती कलेजा संबंधी संपूर्ण इलाज
9: पैथोलॉजी लैब संबंधी संपूर्ण चेक जांच किया जाते है
10: वीडियो एक्सरे डिजिटल एक्सरे और संपूर्ण सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पताल के साथ हैं हर एक महीना के अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल से शुगर और थायराइड रोग के इलाज के खातिर डॉक्टर सुमन बराल आवश्यक जानकारी भी करावा जाता है
9: नोट ई अस्पताल में यहाँ कार्यरत संपूर्ण डॉक्टर लोगन से प्रत्येक महीना के अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा ले साथ ही जाँच में यहाँ 20% छूट के व्यवस्था किया गया है
10: संपर्क नंबर 081-536-465 98-242-80-665 और 98-482-80-465

हाँ तो श्रोताई, छोटा सा व्यापारी विज्ञापन के बाद में फिर से जो सुनागा कवाली, कवाली के बाद में अब हम आप लोगों से ये कहते कि अब समय एकदम ख़त्म है तो अब हम फोन भी ना ले पेबे। तो ऐसे हमरे फोन करे वाले साथी रहे नेपाल वाले राजा उर्फ सागर बहेलिया जी, जो बिलासपुर से गलत बताए ना है। ऐसे हमरे जो ये राजीव मौर्या जो भवानी बाग से सही बताए ना है। हमरे जो महेश कोरी सही बताए ना है। ऐसे हमरे भद्रा सिंह सिरपाली सही बताए ना है, मगर आज के विजेता भी हैं भद्रा सिंह सिरपाली, सी गांव खजुरा गांव पालिका बांके से। हाँ तो श्रोता, जैसे सांपों से एक भरी पेटारी वाला हो माचिस, ऐसे हाँ जो दो नंबर मारा है हाँ काला हंडा उज्जवल भात ले लो भैया, हाथ है हाथ ही हो सिंगाड़ा। तो साथी आज के विजेता हमरे भद्रा जी भाई, उनका बहुत बहुत बधाई है। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जफरुद्दीन और पप्पू जी, ज्योति टेलर के, जहाँ सब मेरे के लेडीज जेंट्स अड्डा ऑफिस, कोट पैंट कुर्ता सलवार सफारी सूट सब कपड़ा सेत हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम का ऑडियो वीडियो सब पठन हमरे प्रावधिक में यहाँ जो चंदा जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज के कार्यक्रम में यहाँ आप लोगों से अब हम कहा कही, अब समय तो कहते जल्दी भागो मगर जाग जू नहीं हो तो राय श्रोता, मगर आज के कार्यक्रम जो आप लोग अपने अपने जगह पर बैठ के सुनागा, आप लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं। प्यारा से कव्वाली के साथ में हम पर श्रोता संचालक मियाँ जी विदा ली थे। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार।

0: कहा है फिर से कहते हैं
1: दिल में, लेकिन हम हैं के ताल्लुक को निभाने में लगे हैं।
2: अच्छा
1: हेलो हबीबुल्ला भाई जरी सी बरा दो, जरा सी सॉरी, हम हैं खान साहब, हम हैं के ताल्लुक को निभाने में लगे हैं। कुछ लोग मगर दिल को दुखाने में लगे हैं, कुछ लोग मगर दिल को दुखाने में लगे हैं। मालूम करो हाथ उन्हीं का तो नहीं है इसमें, जो लोग यहाँ आग बुझाने में लगे हैं।
0: लेकिन नेहा किसी लिबास की खुशबू जब उठ के आती है,
1: उड़ के आती है।
0: अच्छा
1: दिस इज जॉन एलिया।
0: किसी लिबास की खुशबू जब उड़ के आती है तो देखो तेरे बदन की जुदाई बहुत सताती है, तेरे बदन की जुदाई बहुत सताती है, तेरे बगैर मुझे चैन कैसे पड़ता है, अरे तू बता मेरे बगैर तुझे नींद कैसे आती है।

मैं ना जाऊंगी तेरे साथ कभी दुल्हनिया बनकर, लेकिन मेरा कहना है हटा लो हाथ। अभी ये वीडियो माशाल्लाह इंस्टाग्राम पे 2 मिलियन वायरल हुआ है, हाँ देख सकते हो, मजाक कर रहे हैं। माशाल्लाह अल्लाह का एहसान है। लेकिन नेहा हटा लो हाथ, हटा लो हाथ आंखों से ये तुम हो जानता हूं। मजा आ रहा है, हटा लो हाथ आंखों से ये तुम हो जानता हूं मैं, तुझे खुशबू ही नहीं आहट से भी पहचानता हूं मैं।

नेहा मुंबई ले जाऊंगा, पटना घुमाऊंगा। देखो मुंबई ले जाऊंगा, पटना घुमाऊंगा, पटना घुमा के तुझको मान को लाऊंगा, पटना घुमा के तुझको मान को लाऊंगा, पटना घुमा के तुझको मान को लाऊंगा। ये ऑल कमेटी मानगोई उनकी जानिब से, और ये हमारे मुखिया जी की जानिब से बहुत सारा रुपए से नवाजा। किस बात पर?

0: ರಂಗಾ ಉದಯದೇಶ್ ಮೇರು ಎವರೆಸ್ಟ್
1: बीर डेंटल बीर डेंटल बीर डेंटल
2: नेपालगंज शहर में संचालित अत्याधुनिक सुविधा संपन्न बीर डेंटल में दात तथा मुख संबंधी संपूर्ण उपचार काठमांडू तथा भेरी अंचल अस्पताल का अनुभवी वरिष्ठ डाक्टर आरके लामिछाने द्वारा उपचार गरिन्छ।
3: डाक्टर लामिछाने द्वारा गरिने विशेष उपचार दाँत सफा करने दाँत भर्ने दाँत निकाल्ने दुखेको दाँतको जराको उपचार खाली ठाउँमा दुरुस्त प्राकृतिक जस्तै नक्कली दाँत राख्ने बाङ्गो टिङ्गो तथा नमिलेको दाँत फिक्स अर्थोडन्टिक प्रविधि द्वारा मिलाउने गिजाको रोग जस्तै गिजा सुन्निने रगत पिप बग्ने मुख गनाउने र दाँत हल्लिने समस्याको उपचार पहेलो खैरो दाँत सानो र ठुलो दाँत छिद्रा तथा ग्याप भएको दाँतलाई कस्मेटिक उपचार प्रविधिद्वारा राम्रो बनाउने दाँत मुखको चोटपटक तथा बङ्गारका हड्डी भाँचिएको पनि उपचार हुने
2: सम्पर्क बीर डेन्टल क्लिनिक भेरी अञ्चल अस्पतालबाट 150 मिटर त्रिभुवन चोक तर्फ
3: फोन नम्बर 081532375।
4: हमका बिहा के खातिर सोफा दराज डाइनिंग जस्ट सामान और ऑफिस के खातिर सामान खरीदे का है कहाँ जाए तो ठीक रही तनी बताए दियो हमका।
5: सुना जाए आपका हम बताई थे आप नेपालगंज में हैं अपने घर के खातिर ऑफिस या तो दुकान के खातिर गुणस्तरीय फर्नीचर खरीदे चाह जाते है तो अर्बन फर्नीचर एंड फर्निशिंग हब प्राली में यहाँ जावा जाए हुआ पर यहाँ आर्डर के अनुसार बेड सोफा डाइनिंग टेबल ऑफिस टेबल ड्रेसिंग टेबल दराज जस तमामन मेर के फर्नीचर के सामान मिलत है उके साथ टिकाऊ सामान आकर्षक डिजाइन और उत्कृष्ट फिनिशिंग के साथ बनावा भी जात है।
4: किफायती मूल और मैत्रीपूर्ण सेवा के साथ आपकी आवश्यकता के हिसाब से फर्नीचर तैयार किया जात है।
5: एक दफी सेवा करे मौका दीन जाए संपर्क के खातिर सुर्खेत रोड नेपालगंज बांके संपर्क नंबर 9844885375 और 9808254037।
6: नींद आए हमको हाय जग
4: सोना बाबा के कान पिरात है दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई।
7: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य शहर केंद्र जाओ न यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतन कहाँ यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा जीर्ण रोग कान में यहाँ ढूसी भवा कान खजुआब कान से कम सुनाई देव कान बंद हो बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा कान के जाली में छेद भवा कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करते हैं साथ ही कान कम सुनने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी सीआईसी आरआईसी जैसे मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
4: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो।
7: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेवा केंद्र प्राली नेपालगंज फुलटेकरा आर्मी बैरक के सामने राप्ती रोड बांके संचालक पूरन चौधरी संपर्क नंबर 9848206697 9858236697 और 9814083697।
8: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहां सहभागी हुआ जाए नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।
4: भैया बहुत दिन से महिनवारी में यहाँ गड़बड़ी सफेद पानी बहाव और पेट पीराव समस्या से बहुत दुख पाए चुके हैं कहाँ जाए तो बढ़िया रही।
7: हम भी पहले गैस्ट्रिक बवासीर और पेट के समस्या से बहुत परेशान रहे बाद में यहाँ नेपालगंज के मेडिकेयर क्लिनिक गए वहाँ मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के समस्या के उपचार और ऑपरेशन एक ही जगह होते है अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर से सेवा मिले के बाद अब बहुत आराम हुआ है।
4: सही वहाँ का सेवा मिलत है तो भैया
7: सुनो हुआ औरतन के बांझपन सफेद पानी महीनावारी में गड़बड़ी गर्भवती जांच, बच्चादानी और स्तन संबंधी समस्या के उपचार होते है और पुरुष या अन्य बीमारी लोगों के खातिर गैस्ट्रिक बवासीर हर्निया अपेंडिक्स थायराइड पित्त थैली और शरीर में यहाँ गिल्टी और तमाम मेर के लैप्रोस्कोपिक और लेजर सर्जरी सेवा भी उपलब्ध है।
9: हाँ मेडिकेयर क्लिनिक में यहाँ वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक दूरबीन और लेजर सर्जन डॉक्टर कमर हसन अंसारी और वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक स्त्री और कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमीरुन निशा से सेवा देते हैं। आप भी आज ही कोई भी चेक जांच और ऑपरेशन के खातिर नामदर्ता कह के तहदिल हुआ जाए
7: मेडिकेयर क्लिनिक नेपालगंज उप महानगर पालिका वडा नंबर 11 बीपी चौक के नेरेन उप महानगर पालिका के कार्यालय के लाइन में यहाँ संपर्क नंबर 97649 11786 98224 92377।
10: सबके संयुक्त आवाज मेडिकेयर क्लिनिक मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के स्वास्थ्य उपचार के विश्वसनीय गंतव्य।
11: Back to back. Back to back.
12: In this song on
11: Stay tuned.

0: सामना डिजिटल म्युजिक प्रणाली मार्फत अब बजारमा।
1: यो कृष्ण सार एफएम
2: 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जत्तिकै तेज।

0: रंग बहार रंग बहार
1: बर्जर संगे उपहार उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियार
0: बर्जर पेंस ले घर रंगाउनु होस् र लकी ड्रा मार्फत यामाहा रेजियार 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्
1: साथै 65 इन्च को स्मार्ट टीवी रेफ्रिजरेटर वाशिंग मशीन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहारहरु पनि घर रंगाऊ खुशी बनाऊ उपहार जित्ने अवसर पाऊ
0: बर्जर पेंस
2: यो कृष्णसार एफएम
3: 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जत्तिकै तेज

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 10 बजेको छ.
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी.